0: चला सुखिस्ता मुझे न किसास्तो दिया फरेंसी की लाफेशी किरान फिल्मिता
1: अच्छी तुझे कोमाशी
0: इंची शिवहु
1: याचु
0: कौन था तो ये मौसी भी जीजों की ये शी कौन के ये मौज था ये जो आना देखो शी
1: जान योग योग मार्श भी
0: आ ता सांता कहाँ चेपी कौन के यूनो चेक ता ता आ चेच था तो आ जिम चुक ता दे जे इन ता
1: अरे चेंजेस ले शुई
0: थोंग वांग आ कंग ची ने ची ने लुई जो दिन ने लिया लंग जी चेक आ चेपी किरां ये लो लो पर म्यू ही 多次么多，其他的是不是来说你？我也来不及。胖子了，结婚了，落了，亲密度。一年，刚落去那姐姐嘛这边，我日子的那三年，可我心就，空给你，浪子扯着钱去啊。That is，我你中心的，结婚了，拜拜。